0: जाप साहिब जाप श्री मुख वाक पातशाह दसवीं छपै छन तव प्रसाद चक्र चैन अर बर्न जात अर पाद निहंजय अचल मूर्त अनुभव प्रकाश मितोज के जय
1: इंद्र इंद्रान शाह शान गुण जय
0: त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत
1: सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम बन सुमत
0: भुजंग प्रयात छंद नमस्तंग काले।

0: भूत है गुरन है
1: गंज है भंज है जूज है जंज है
0: अमीक है रुभीक है कंध है अभंध है
1: निर्बूज है सूज है काल है जाल है
0: अलह है जा है अनंत है महंत है
1: अलीक है नसीक है निर्लंब है असंभ है
0: अगम है अजम है अभूत है अशूत है
1: अलोक है शोक है कर्म है परम है
0: अजीत है अपीत है अब है अगा है
1: अमान है निधान है अनेक है फिर एक है
0: कुछ हम पर्याप्त छंद।

0: श्री परमाथ समस्ति विभूते
1: कलंकं बिना अनेक लंकी स्वरूपे
0: नमो राज राजेश्वरं परम रूपे
1: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
0: नमो राज राजेश्वरं परम ब्रते
1: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे।

0: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग
1: नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग
0: सदा सच्चिदानंग सर्वंग प्रणासी
1: अरूपे अरूपे सुमस्तुल निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्धकर्ता
1: अदो उर्ध अर्धं अगुं ओग हर्ता
0: परं परं परमेश्वरं प्रोच पालं
1: सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं
0: अशेद्य भेद्य नामं अका

0: दात माता जात जाकर जन्म मरण बहीन
1: चक्कर वक्र फिरा चतुर चक मान ही पुरतीन
0: लोक चौदह के बिखै जग जाप ही जय जाप
1: देव नाथ मूर्त थाप समझे थाप
0: परम रूप नीत मूरन पूर्ण पुरख पार
1: अम्ब गण पंजन हार
0: काल ही कलास जुगत काल पुरख देश
1: धर्म काम सो परम रहत भूत लख पेश
0: अंग राग नरंग जाके जात पात ना नाम
1: गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम
0: आप रूप मीकन उस्त एक पुरख अवधूत
1: गर्भ गंजन सर्व पंजन आदि रूप सूत
0: अंग हीन भंग नातम एक पुरख पार
1: सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार
0: सर्व हंता सर्व गंता सर्व ते अनपेख
1: सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व चैत्र न जान ही जे रूप रंग रेख
0: परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नित
1: पान शास्त्र न आवई वो चित
0: मधुवार छंता प्रसाद गुण गन उदार महिमा अपार
1: आसन अपंग उपमा अनंग
0: अनुभव प्रकाश निस दिन अनास
1: अजान बाहान शाह
0: राजान राज पानान पान
1: देवान देव उपमा महान
0: इंद्रान इंद्र बालान बान
1: रंकार रंग कालान काल
0: अनभूत अंग आपा अपंग
1: अपार गुण गन उदार
0: गुण गन प्रणाम निर्पैन काम
1: प्रचंड मित गद अखंड
0: अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म
1: सर्व पर अडे अनढंड वाडे

0: प्रसाद छंद नमस्तम चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता
1: चतुर चक्र धाने चतुर चक्र जाने
0: चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र पारती
1: चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले
0: चतुर चक्र वासे चतुर चक्र चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे
1: चतुर चक्र मानिया चतुर चक्र दानिया
0: चार श्री छांद न सत्र न मित्र न भरमंग न पितर
1: न कर्मंग न काये जन्म अजाय
0: न चित्र न मित्र परे है पवित्र
1: शांत प्रसाद काते पिज पेस के आ गंज कर्म के आ पंज परम के दूत भरना के विभूत करना
2: के तरम तो
1: के अशोक भरना के सरबा भरना
2: कृति है के शत्रु
1: के ब्रह्म।

निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त प्रभुत्व है प्रभुक्त प्रभाव है सुयुक्त सदा है सहगुण स्वरूप है भेदी अनुरूप है समस्त प्राज है सदा सब साज है।

0: अटीट धर्म अटीट कर्म
1: अनुब्रण अनंत दाता महंत
0: हर खोल मना शांता प्रसाद कुरनालिय है अर कालिय है
1: कर खंडन है मैं मंडन है
0: जगदेव सिर है परमेश्वर है
1: कर कारण है सर्व

0: मंडस है खल खंडस है
1: परते पर हैं करुणा कर हैं
0: जपा जपा थपा थप है
1: अकृता कृत है अमृता अमृत है
0: अमृता मृता करना कृत है
1: अकृता कृत है धरणी धृत है मृतेश्वर है
0: अमृतेश्वर है परमेश्वर है
1: अकृता कृता अमृता अमृत है
0: अजवा कृता मृता मृत है
1: ननायक है घर कायक है
0: संपर है कुरनालय है
1: निर्भनायक है सर्वपायक है
0: अपंजन है अरगंजन है
1: रिपतापन है जाप जापन है
0: अकलंकृत है
1: सर्वाकृत है
0: सर्वाकृत है
1: कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा
0: परमात्म है सर्वात्म है
1: आत्म वास है जस के जस है भुजंग पर्यंत छंद
0: नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे
1: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
0: नमो तेज
1: नमो अंधकारे नमो तेज नमो बृंद बृंद नमो बीज बीजे
0: नमो राव सिंह ताम सिंह शांत रूपे
1: नमो परम तत्म स्वरूपे
0: नमो जो जोके नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
0: नमो जुजुते नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो भोज भोजे नमो पान पाने
0: नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे।

0: सारे ही देश को देख रहे हो, मत कहो ना देखे प्राणपति के।
1: श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते करती
0: माते मतंग जरे जर संग अनूप अतंग।

0: कहेंगे,
1: पुन प्रतापन बाढ़ जाए तो तुन पापन के पो पुंज कपेंगे,
0: सास मुपर सन फिर जग छत्र सब है लोक जपेंगे,
1: मानव इंद्र गुजिंद्र निराधव जोन ते लोक को राज करेंगे,
0: कोट शनानक जात गदान नेक स्वयंबर साज भरेंगे,
1: ब्रह्मेश्वर बिशन सची पात अंत सहजम पास परेंगे,
0: जे नर श्री पद के प्रसन्न भगत नर फेर न दे तरेंगे,
1: कहाँ पे जो दलोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो,
0: नाथ फिर रे सा समुद्र लोक है ऊपर लोक आयो,
1: पास की ओ बखियान सो बैठ के ऐसी ऐसे सो बैस बतायो,
0: साथ कहो सुन ले उस समय जिन प्रेम की ओ तिन ही प्राप्त आयो,
1: काहू ले पहाड़ पूज तरियो सर काहू ले लिंग घुरे लटकायो।

0: तारी है, चुन चुन शत्रु हमारे मारी है।
1: आप आते मुझे बरिया, मरण काल का तास बरिया।
0: तू जो सदा हमारे पच्चा, श्री अस्तु जो करो रचा।
1: राख रो में राखन हारे, साहेब संसाए प्यारे।
0: दीन बंध दो टनके हमता, तुम हो पूरी चतुर दास कंता।
1: काल पाए ब्रह्मा बपरा, काल पाए शिव जू अवतरा।
0: काल पाए कर विष्णु प्रकाश, सगल काल का किया तमाशा।
1: जवन का

0: गुड़ की सोय पहुंचे नाही मनसा सच समानी।
1: जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे
0: कह नानक जिन मन निर्मल सुधार है गुरु नाले।
1: जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै
0: होवे ता सनमुख सिख कोई जियो रहै गुरु नाले।
1: गुर के चरण हृदय ध्याए अंतरात्मा समाले
0: आप छाड़े सुधार है पर न गुर बिन अवर न जाने कोए।
1: कह नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए।
0: जे को गुर ते विमुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पाए
1: बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर ता कोई पुछो विवेकियां जाए।
0: अनेक जुनी परम आवै बिन सतगुर मुक्त न पावे
1: अनेक जूनी परमे आवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए।
0: कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए।
1: आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी।
0: बाणी ता गावो गुरु केरी बाणी आसिर बाणी।
1: जिनको नजर कर्म होवे हृदय तना समाणी।
0: पीवो अमृत सदारो हरंग जपियो सारंग पानी।
1: कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी।
0: सतगुरु बिना होर कच्ची है बानी बानी ता कच्ची सतगुर बाजो होर कच्ची बानी।
1: कंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आँख बखानी।
0: हर हर नित करै रसना कहया कछु ना जानी।
1: चित जिन का हिर लिया माया बोलन भय रवानी।
0: कह नानक सतगुर बाजो होर कच्ची बानी।
1: गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ।
0: शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ।
1: शब्द सेती मन मिलया सच्चा लाया पाओ।
0: आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए।
1: कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ।
0: शिव शक्त आप

से बिर की पैर पंथ की जीश श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नू सिख ही दान।

मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करण मन भाव दे हर पुजन नाही हारिया कर फरमाए सखाया वेख मैलत मरन विसार।

सो साहिब सदा संभालिया, जित कीता पाइया अपना, सकाल पुरी क्यों कालिया, मंदा मूल न कीचे ही दे लम्मी नजर निहालिया, जो साहिब नाल नहारिया ते वे हा पासा टालिया, पिछला है उपर कालिया, पिछला है उपर कालिया।

चढ़ाए थे, एक वाई थे, एक सुन के अंदर की था देना प्यारिया सचाया जी का मारा था अंतर के खासा जी साहब बोलो जी। जेना सिंगा सिंगिया दे धर्म हेती सिते बंद बंद कटवाए खोपड़िया लोहाइया चरखड़िया ते चरे आरा ना चरवाए गए गुरुद्वारे दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म ने हाया सिखी कैसा सोसा ना निभाई तैं दी पवित कमाए दत्ता अंतर के खासा जी साहब बोलो जी। पंजा तख्ता सरपत गुरुद्वारे गुरधामा जिन्हें तो पंथ ने छोड़ा गया है खासा जी साहब बोलो

चंडे बोंगे जी को जो कटल तरम का जय का बोलो जी सिखा दा मानी वा मत उची मत पत्ते रखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ सहायता ताजियो सीनन काना साहिब अते गुरु गुरुद्वारा

तरी उतरे एक उतारे एक पौड़ी दर्शन दीजे नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक दिल पी ना तिरिया तिरिजा प्रभ स्यो मन लीना जो जन मीना चातरक जिवै तिसंतिया जन नानक गुरपुरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार दे प्रिय हबे सखिया मु कही न दे।

मन चाओ ओ ठंडा हो कद पाई गुणता सा जिनी मेंढा लाल रिजाया हो तिस आगे मन तेहनिया देहनिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मुँह दस पिखा

सूर कबीर सुत क्या करे जागरु भय दुख जप बस गुरु नय सुख सुव सुख कबीर सुत क्या करे उसके मुरार एक दिन सोवन होए गो लांडे गो प्रसार कबीर सुत क्या करे बैठा रोर जागे जाके संके बिछरा ताही के समलाग कबीर संत की गैल न छोड़िए मार्ग लागा जाओ पे कति पुनीत होए फिर जपिए नाग कबीर सागर संगना कीजिए दूर हो जाइए भागे आवासन करो करसिए तब चला को दाग कबीर राम कना चेते हो जरा पूछो आए लाकी मंदिर द्वार ते अब के कटिया जाए कबीर कारण सो गयो जो कि नो करतारे ने त्रिविंदु सर को नहीं है कैसे जिनहार कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आम जाए पहुँचे खासम को बीच न खाई काम कबीर ठाकुर पूजय मूल लय माढ़ा तीर्थ जाहे देखा देखी स्वाम तारे भूले फटका खाए कबीर पान परमेश्वर किया पूजे सब संसार इस प्रवासे जोरे बूढ़े काली धार कबीर काग दिखी उबरी मस्की क्रम कपाट पाहन भोरे बिरत में पंडित पाड़ी बाट कबीर काल करंता वैकाले अब करता सोय ताले पाछे कछु न होए ब्यो जो सिर पर आवे काल कभी ऐसा जन तिक देखिया जैसी तो ही लाख दिशे चंगल बाँव बहुना मत ही ना पाप कबीर मेरे बुद्ध को जम कर चकार जिन्हें जमुआ सिर दिया सो जपया पर्वतगार कबीर कस्तूरी भया और पै सवदास जो जो भक्त कबीर के त्यो तो राम निवास कबीर कह कुछ परे कुटम के काठे रह गुरु राम जाय परे धर्म दाय के पूछे माताम कबीर साहब ते सुकर भला रखे अच्छा गाओ प्राप्त बपरा मर गया कोई न लह नाव कबीर कौडी जोड़ी जोर पे जोरे लाख करोरे चलती बार न कछ मिलो ले लंगोटी तोर कबीर बासन वैष्णो हो रखे फिया मल मिली चार बार कंजन बारहा भीतर बड़ी बंगार कबीर उड़ा हो रो बाटका तज मन का मान ऐसा कोई दास हो ताही मिले भगवान कबीर रोड़ा हुआ था क्या भया पंथी को दुख दे ऐसा तेरा दास है जो तरणी मैं खेल कबीर खे हुई तो क्या भया जो उड़ला के आंगे हर दिन ऐसा चाहे जो पानी सर्वांग कबीर पानी हुआ था क्या भया सीरा ताता हर दिन ऐसा चाहे जैसा हर ही होए पूज कौन कणका में सुगत जा फहराए ताते बड़ी मधु करी संसंग गुण गाए कबीर पाटन जो ते उजल कर राम भगत जेठाए राम सुने ही बाहर जमपुर मेरे भाए कबीर गंग जमन के अंतरे सह सुन के घाट ता कबीरे मटकिया खुज मुंजन बाट कबीर जैसी उजी फेड़ ते जो तैसी निभ ओढ़ हीरा किसका बापरा पूजे न रतन करोड़ कबीरा एक अचम को देखो हीरा हाट में पाए मुंजन हारे बाहर कुंभी बदले जाए कबीरा जहाँ ज्ञान तय तन है जहाँ झूठता है पाप जहाँ लोह तय काल है जहाँ कुमा तय आग कबीर माया तजी ते कह गया जो मान तज नहीं जाए मान मुनि मनोर गले मान सवे को खाए कबीर साचा सदगुण में मिले आशा जो बाहे आए कोई लागत ही कोई गिर गया मिल गया पर कले जे से कबीर साचा सदगुण क्या करे जो सिखा मैं चूक अंधे कन लागे जो बात बजाइए फूक कबीर है गे बाहन सगन खान छत्रपति की नार तास बतंत्र ना पूजे हर जन की बनहार करे वीर निरकुनारी क्यों निंदिए क्यों हर चेरी को मान मांग सवारे देखे को सुमरे हर नाम कबीर तू नहीं पाए चित भये सतगुर बंदी धीरे कबीर हीरा गण जरा मान सरोवर तीर कबीर हर हीरा जन जौहरी लहके मंडे हाट जब ही पाए पारक तब हिरन की साठ कबीर काम परे हर सिमरी ऐसा सिमरो नित मरा पुरबासा करो गया बहोरे बित कबीर सेवा को दोए बड़े समझ कर राम राम जुदाता मुक्त को समझ पावे नाम कबीर जय माग पंडित गए बार उछे परी बहीर आग इका उग्र काटी राम की तय चढ़ रहे कबीर कबीर दुनिया के देख मुआ चालत कुल की कान तब गुल का माला से तब करे मसान कबीर डूबे गोरे बापरे बोलो गुण की कान पारोसी के जो हुआ तू अपने की जान कबीर भली मधु करी नाना विधि को नाज दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज कबीर दावे दाजन होता निर्दावे रहे न सांक जो जन निर्दय रवे स

शुम्भ सर्वर्परापि न शके कुलमीरे फागुणे तर्पायतु पुरपरमियो कबीर कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यो एकते शरीर ए दो करुणा खिसे सोध गहरे कबीर कबीर कोठी काठ की दैज सलागी आ गए पंडित पुंडित जल मोए मूर्ख बुरे खा गए कबीर संसार दूर कर काग दे विहाये बावने अखर सोध गए हर चरण चलाए कबीर संत न चढ़े संधि जो कोट मिले संत मिलया फिर खेडियो नाता शीतलता नत जंत कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन वाला जग जारिया जो सोजन के दुख समान कबीर सारी सृजन हर की जाने नाई कोय कह जाने अपन तनि कह दास जवानी होय कबीर भली भई जो पौ परया जिसों कही सौ भूल और अगर पानी पै जो जाय जाय मिलो ढलकूल कबीरा तूर सपेर कह पुरिया बांधी दे दे विचार को भी अपनांत कह की गए कबीर सूर्य चांद के दे भई सब दे गुरु गोविंद के बिन मिले पलट भई सब के जैन बहुत पै नहीं तय जय बहुत है नाहे कह कबीर को का विचार के सुन सुनो मनमाय कबीर जिन्हों की जन ने तिन सुगुणी निभाए मुझ पूजा पूजना पूरी पूरी बलाए कबीर मारे बहुत पुकारे फिर पुकारे और लागी जोड़ मरम की रे कबीर अठौर कबीर चोट सहेली सहल की लागत ले सास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास कबीर मुलम नारे क्या चढ़े साइन बहरा होए जा कारण तू बांग दे दिली भीतर जोए सेख से बुरी बाहर क्या हज का बे जाए कबीर जा की दिल साबत नहीं था को का खुदाए कबीर अल्लाह की गर बंदगी जय समर दुख जाए दिल में साई बर उठे बुझे बुलंती नाए कबीर जोरी के जुलम है कहता ना हलाल दफ्तर लेखा मांगे ता होए को कौन हवाल कबीर खूब काना की चरी जा मैं अमृत लो ने हेरा रोटी पारने गला कटावे कौन कबीर गुर लागा जब जानिए बिटे मोत अंताप हर सुख दाजे नहीं तब हरे आपे आप कबीर राम गण में भेद है था मैं एक विचार सोई राम सुबह कह सोई कौतक हार कबीर राम राम कह कह बेमाय विवेक एक ने कह मिल गया एक समाना एक कबीर जाकर साधन सेवी हर की सेवा नाए ते कर्म हर सार के भूत बसा तिन माए कबीर पूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान पाव ते पिंगल भया मारे सतगुरु बाण कबीर सतगुरु सूर में बाह्या बाण जो एक लांग ही कोय गिर करया पर करे जैसे कबीर निर्मल बूंद के आकाश की पर की भूम विकार बिन संगत यो माने हुए गई पड़शार कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम लाए सियाने पाच गए नानक वारी पाए जाए कबीर हज काबे हो गया जा कबीर हज काबे हो जाए ता अगे मिले खुदाए साई मुझसे लर पलिया तुझे किन फुरमाई गाए कबीर हज काबे होए गया केती बार कबीर साई मुझ में क्या कथा मुखन बोले पीर कबीर जी जो मारे जोर कर कहते हैं जो लाल दफ्तर ते जब काट है तब होएगा कौन हवाल कबीर जोर किया सो जुलम है ले जवाब खुदाए दफ्तर लेखा निकसे मार मुहे मुखाए कबीर लेखा देना सोहेला जो दिल सूची होए उस साचे दीवान में पलन पकड़े कोय कबीर धरती अर आकाश में दो चुंगरी आबाद खड़ दर्शन संसेवरे और चौरासी सद कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ मेरा हा न हूँ जब आपा पर का मिट गया जब देखो तब तो कबीर बुकार चितवते झूठे करते आस मनोरथ कोय ना पूरे चाले उठ निराश कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार सो कदन डोले जिस राखे सजन हार कबीर कहानी पीड़ित सतगुरु लिए छड़ाए परा पुरबली भावनी प्रगट हो ही आए कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज ब्याज बिड़न तो जाए ना हर भजन खत बटो काल पहुँचो आए महला भंजवा कबीर कुकर भौंकना कन गुजे उड़ताए करमी सतगुरु पाया जिन हो लिया छड़ाए महला भंजवा कबीर धरती साध की तस्कर वैसे गाए धरती कारण व्यापे को लाहू लाए महला भंजवा कबीर चावल कारण तो को मुखली लाए संक संगी बैसते था पूछे तरमराए नाम माया मोहया कहत लुचन मीत काहे ची पोछाए ले राम लाओ चीत।
नाम गए तलोचना मुक्ते राम जमाल हाथ पांव का काम सब चित निरंजन नाल महला बनवा कबीरा हमरा को नहीं हम किस मुके ना है जिने रचन जाए तुझी माए समाए कबीर की चढ़या टागिर भरिया कुछ आयो हाथ पे सदगी जाबिया सोई निभिया साथ कबीर मन जाने सब बात जानत ही गुण करे काहे की कुशलात हाथ दीप कुए परे कबीर लागी ब्री सुजान सो बर जे लोग जान तस रूटी प्यो बने जाके जी प्राण कबीर कोठे मंड भेद कर काय मरस वार कर साढ़े तीन हाथ कणित पौने चार कबीर जो मैं चितवे ना करे क्या मेरे चितवे होए अपना चितवे हर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता भी आप करे सी अचिंत भी आपे दे नानक सो सलाई जे सब ना सार करे महला बनवा कबीर राम न चेत्यो फिर लाल चुमाए पाप करंता मर गया पुनी किनमाए कबीर काया का चीकार भी केवल का चीता हत सादर के ताराम पाजे ना तब नी बात कबीर कैसो कैसो कूकी है ना सोई है सार रार दिवस के कूकने कब कुछ पुकार कबीर काया कजली बन भया मन कुंतर कमाए मानते अंकुश ज्ञान रतन है केव कबीरला संत कबीर राम रतन को थरी बाल के आगे खोल को आए को मिले को का की ले को महंगे मोल कबीर राम नाम जाने नए पाले कुट कुटांब तंदे ही मैं मर गयो बाहर कहीं ना बांबे कबीर आखी केरे माट के पल पल गई विहाए मन जंजाल न छोड़ी जम दिया दमा माए कबीर तरव रूपी राम है फल रूपी बैराग छाया रूपी सादा जिंत जय भाग विवाद कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत शीतल छाया भगाए फल पंखी केल करंत कबीर दाता तरवर दया फल करी जीवंत पंखी जले दिसावरी फिर गुरुपुरा सुधर का सुगुण फलंत कबीर साधु संग प्रावति लिखिया लिलाट मुक्त पदार्थ पाए ठग नाव कट काट कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि होते आदि भक्तन से ती कोसते जो किन्ने सो लाभ कबीर भांग मछली सुरा पान जो जो प्राणी खाहे तीर्थ व्रत नेम किए थे सबैर सतर जाए नीचे लोई न कर रहे हो ले सजन कटमाहे सब रस के लो पीस की लगाओ नाय आठ जाम ससर कर ही तो निरकत रहे जियो नीचे लोइन के ऊपर सब गुण देखो पियो मैं सुन सकी पी मैं जियो बसे जी मैं बसे के पियो जियो पियो बुझे नहीं कट मैं जियो को पियो कबीर बामन गुरु है जगत का भगतन का गुरु ना है वर जुड़ के पाँचमो आज पाँच हो गए दो माँ चार हो गए दो माँ हार है खांड रे तुम्हें बिक्री हाथी सुनी न जाए कह कबीर पुकुर पड़ी हो जाए चिंट की टी हो के खाए कबीर जाता सात ब्रह्म की फीस काट कर गोहे खेलत खेलत हाल करे जोग जोए ता होए कबीर जाता सात ब्रह्म की पाके से तीखे ले काची सरसों पेड़ के नाकल भई न तेल ढूंढत डुलते डोलत अंत गाते अचिन्त नाय संत कह नामा के भाई बिन भगत भगवान हर सो हीरा छाड़ के करे अन की आस ते नर दूत जग जाहेंगे सत पाके रविदास कबीर जो ग्रह करे धर्म कर जो ग्रह करे कबीर जो ग्रह करे तो धर्म कर नहीं तो कर बैराग बैरागी बंधन करे ताको गुरु भाग सलोक से फरीद के ओंकार सतगुरु प्रसाद जिस दिहाड़े तनवरी साहे ले लिखाए मलक जरखनी सुनीदा मोह दिखा ले आज जिंदनी मानी कड्डी हड्डा कुकुड़काए साहे च लिखे चलने जिंदू नु समझाए जिंदू मोटी मरण वाल लै जसी प्रण आए अपन हथी जोड़ के कह गल के ताए बालोह निकी पुरसला ते कन्नी ना सुने आए कि फरीदा खड़ी पुंदी आखड़ा ना मुहाए फरीदा दर्द रवे सी गाखड़ी चलना दुनिया घाते बन उठाए पोटले किते वन्या खाते कुछ न बुझे कुछ न सुझे दुनिया गुजी भाए साई मेरे चंगा किता नाई तहूं भी दिन जाए फरीदा जे जाना ते तोड़ रे संभल बुक भरी जे जाना सुन लाता थोड़ा मान करे जे जाना लड़ छिजना पीढ़ी पाई कंड तै जगड़ मैं नायक सब जगिटा हंध फरीदा जे तू अक लतीफ काले लिखना लेख अपने गिरवाण में सिर नीवा कर दे फरीदा जोतें मारन मुखिया तिना मारे घूम अपने अपने कर जाइए पैर तिना दे चुम फरीदा जात कट्टन वेल जा तू रता मलक सवाए नी जा भरिया तां लद्या
देख फरीदा ज्योतिया दाड़ी होई भूल अगू नेड़ा।

दुबजा छोड़ पै निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे, सरबर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सरबर मैं हंस

हाँ जी बैठ जाओ। गुरुकुर वालों देख जिहड़ी उह प्राप्त करो। सिंघ देख वरता रहे ने, बाकी संगतां दे चरणां च बेनती है। आप संगतां नूं पता है दूसरा आनंद कारज भी आप उस विच शामिल होए हो, इत्थे ही होणा। सो सुभाग जोड़ी नूं बेनती है सतगुरु पातशाह जी नूं नमस्कार करके, देख सक के नमस्कार करके, तुसी नमस्कार करके सतगुरु पातशाह जी नूं नमस्कार करके थोड़ा साइड ते बैठ जाओ, जां तुसी थोड़ा जे तुसी चाहुंदे हो बाहर ते ओह बाहर बैठ जाओ। हुण आप सरबत संगतां इसे तरह सजे रहो। कीर्तन आरंभ होण लग्या जी। दूसरे परिवार नूं बेनती है ते जदों कीर्तन आरंभ होवेगा आप गुरु हजूरी अंदर पहुंचो जी। बाकी संगत इस तरह सजी रहे। आपां बड़े अदब सत्कार नाल इस तरह हाजरियां भरनियां।

अनदिन कीर्तन केवल मखियान ग्रसित मैं सोई निर्वाण एक ऊपर निजन की आशा तिथ की कटिया जम की भाषा पर ब्रह्म की जिस मन भूख नानक से न लागे दुख जिसको हर ब्रह्म जित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसे डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सो दत सो दत सो दत सीजिया गुरु प्रसाद समझिया जब देखो ता सब किश मूल है नानक सो सूखम सोई अस्तूल नै किश जन्मे नै किश मरे अपन चलता पी करे आवन जावन दृष्टन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल में आप अणक जुगत रह था प्युताप अपनासी नाही किश खांड धन तार ब्रह्मांड लख पे पुरख प्रताप आप जपाय था नानक जाप जिन ब्रह्म जाता सो सो बवंत सकल संसार उतरे तिन मंत प्रभ के सेवक सकल उदाहरण ब्रह्म के सेवक दुख विसारण आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जप निहाल उनकी सेवा सोई लागे नचनो कृपा करे बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम कर मान जो किछ करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाय होवे सो ए करने हर पुछाने सो ए प्रभ का किया जन मीट लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे समाये समाये ओ सुख निधान हो बनाए आपस कहो आप दिनो मान नानक प्रभ जाने को जान सलोक सर्ब कला पर पूर प्रभ बिरता जानन हार जाक सिमरन उदरिया नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गंडन हन गोपाल सर्ब जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरता कोई ना है रे मन मेरे सदा हर जाप अपनासी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जैसे प्राणी लोचे कोय तिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जो सगल घट सोए तनवंता होए क्या को गर्भे जा सब किछ तिसका दिया दरबै अत सूरा जे कहु कहवे प्रभ की कला बिना कहतावे जे कहु एबै दातार अत दिन हर जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग नानक सो जंतदा रोग जो मंदिर को थामे थमण त्यों गुरु का शब्द मने असमण जो पाखाण नाव चढ़त रहे प्राणी गुरु चरण लगत निसर है ज्यों अंधकार दी प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए विगास ज्यों महा ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिरलाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देवन आर वर्त्या तुम तथे चितार जो कच करे सोई सुख मान भूला गाय फिरे जान कौन बसाई तेरे संग लपट रहे हो रस लो भी पतंग राम नाम जब हृदय माए नानक पासे थी कर जाए रिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज मान लियो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाद खेप संत संचाल वर्त्या विख्या जंजाल धन धन कै सब कोय मुखुजल हर दर गै सोए व्यापार विरला व्यापार है नानक तां कै सत बलिहार है चरण साधके तोये तोये पीओ अर साधकों अपना जियो साधके धूर करो स्नान साधु पर जाइए कुरबान साध सिवड़ भागी पाइय साध संग हर कीर्तन गाइय अणक बिगनते साधु राखै हर गुण गाय मतला सचा के उठ गए संते दर आया सर्प सुख नानक तेह पाया मृतो कौ जी बालन हर भूखे कौ देवते आधार सरबण दारण जाके दृष्टि माए पुरब लिखे का लैना पाए सब किश तिस्काउ करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रैनी सब ते उच निर्मल हे करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जा कै मन गुर की प्रतीत जन आवे हर प्रभ चीत भगत परचुनिया तै लोए जा कह हृदय को होए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुकैत साची दृढ़ साचा आकार सच वर्त साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता।

हेतान सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक स्मरणाव धारो पाव स्वामी विचारो चरण कर मैर तारो करण कारण सुप्राव सम्राट दृढ़ कर गौ नाम हरवत हे तन संजो भगवंत संजना कर निर्मल मानते कास रख मन माय सर्व रोग नानक मिट जाए जिस धन को चार कुंड रुतावै सो तन हर सेवा ते पावै जिसो कुणत बादशाह मे सो सुख साधु संग प्री जिसो बाको करे भली करणी सा सो अवज हर की शरणी अणगु भावी रोग न जाय रोग मुड़े हर खुद लाए सर निधान में हर नाम निधान जब नानक करके प्रवान मन प्रो दो हर के नाय दिस धावते आवे ठाए ताको विघन लागे कोई जा कर दे बसे हर सोए कल ताती ठांडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाव कल ताती ठांडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाव भवन से पूर्ण व्यास भगत पाया तंबर गा तीत कर जाय बसे अवनासी कहो नान काटी जम फासी तत् विचार कह जन साचा जन्म मरे सो काचू काचा व गुण मटे प्रभ से व्याप्त अक्षण गुरुदेव इव रतन जन्म का होए उदार हर हर सिमर प्राण धारण पावन छूट नारे सिमर सास विचार हर की भगत गुरु मन लाए मन वंचित नान खुल पाए संग न चाल तेरे धन तू क्या लपटावे मूर्ख मना सो तुम मीत कुमर बंता इनते कहो तुम कौन सुनाथा राज रंग माय विस्तार इनते कहो कौन छुटकारा सासी रथ सुवारी झूठा डम झुटपा सारी जी ने तिस बुझ न बिगाना नाम विसार नानक पछतान गुर की मतु ले आने भगत बिना बुडू बे सियाने हर की भगत गुरु मन मीत निर्मल होए तुम्हारो ची चरण कमल राखो मन माए जन्म जन्म के लिख जाए आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कैद रैत कत पाओ सार पुस सार को नाव सह सुवाय नान गुण गाव गुण गाव तिर तिर समाय बिन जाय मैं भी खैर हो चंद से सुख नाव सास करा सार नाम संभाल छाड़ से आनब सकली मना सा संग भावे सच धना हर पुंजी संच करो ब्याजियां सुख दरगे जयकार सर निरंतर एको दे कहो नानक दें के मस्तगले एको जाप एको साला एक सिमर एक उमण आए किसके गुण गावणंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक कर आप पूर्ण पूरे प्रभ्यान गुस्तारिक ते पे करात प्राचित गए मन तन अंतर एक प्रवराता गुर प्रसाद नानक की कजाता सलोक फिरत फिरत प्रावे आया पर तो शरणाय नानक की प्रवेणती अपनी भगती लाइस बजन जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देव हर नाम साजन की मांगो तूर पार परमेश्वर दा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गाओ सास सास प्रभु तुम्हें दया चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत कोटे को धार नानक मांगे नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्ट महासुख होए हर स्वभाव विरला कोय जिन चाखे से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख ने डोला ने सुबर परे प्रेम रस रंग दे जाओ साधके संग परे सरना सब त्याग अंतर प्रकाश संद ने लाग वड भागी जपया प्रसोई नानक नाम ते सकोए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लाए जन को प्रभु दया सेवक नु सदा निहाल मुख बंधन काल मुख जन भया जन्म भरन दुख प्रंगे छपुनी सरदा सा पूरी रव रहा सा संग हजूरी जिसका साधन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों विसरे जे काल न पाने सो कुछ रे की आ जाने सो कुछ रे सब कुछ दिया सो कुछ रे जे जीवन जिया सो कविश्र जगन मिला के गुरु प्रसाद कबीर लाला के गो सो कविश्र विखते काढ़े जन्म जन्म का टूटा गढ़ गुरु पूरे ताते बुझाए आ प्रभु अपन नाम दिन त्या साजन संत क्रोई काम यान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव आप जपो हर नाम जपा भगत पाए तरे संसार बिन भक्ति दिन हो सेसार सर्व कल्याण सुख नित नाम बुढ़ जात पाए विश्राम सकल तू का नाश नानक नाम जपो गुणदास उपजी प्रीत प्रेम रासा मन तनंतरी सुहाव नेत्रो पेग दर्शु कोय मन विकसे सा चन तोय भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करमया गुरु प्रसाद नाम जपलया ता कि उमा कही न जाए नानक रहे सर्व समाए प्रभक्षण दीन दयाल भक्त सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कड़ा करत प्रपाल याद पुर कारण करतार जो जज जो जो भगत जना के प्रण धार जो जज पैसो अपनीत भगत पाए लाए मन हित हम निर्गुण आरणी च जान नानक तुमरे शरण पुर भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए निम कर के गुण गायन कराज भोगे यार के नाम की कथा मन भाए बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हरणीत भली सुकरणी सुभ तनवंत हृदय से पूर्ण गुरुमान

ही फिर जा पशुपति जब आकार कृष्ण दृष्टि तब पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाता बैर ब्रो के संकमान जब उसका वरण चेन न जाओ तब तो हर सौ कोक से व्याव जब अपन आप आपन तुम आओ कि सोत परम आपन खी लिया आप प्रति जा नानी करने हर न दूजा जब होत परम के मिलत नहीं तब बंद मुकुट को किस को गण जावे कर अकम अपार तब नर सुर को कौन उतार जब निर्गुण प्रसाद सुभाए तब से भी सकत कहो कित ठाई जब आप अपनी जोता रह तब कम निर कम कत डरे अपन चल तब करने हार नान ठाकर कम पार बनासी सुखे अपने आसन तजन मरण को का विसरण बनासने जा पूर्ण करता प्रभ सोय तब जम की त्रास कहो किसो है जब अवगत गोचर प्रवे का तब चित्र गुप्त किस पुछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन मान दे अपने आप आप ये चर जा नानक अपन रूप आप ही फिर जा जय निर्मल पुरुख पुरुख पद होता तब मैल कहो कह तोता जय निरंजन निरंकार निर्माण तय कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप गेल जगदीश तय छठ से लगत कहो की जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसी भूकम त्रुतावे करण करावन करने हार नानक करते का नाय सुमार जो अपनी सुभाय अपन संग बनाए तब कौन भाई बा माए बा मित्र सुदभाए जय सर्व कला पे प्रवीण तय वेद कतिब कहाँ को चीन जावे अपने आप है अवतारे तो सगन सगन का भी जारे जा अपन ऊच अपने अब नेरा तय कौन ठाकुर कौन कही चेरा विस्म विस्मर विस्माद नानक अपनी का जन हुआ जय चल अचेत भी समाया वंश से व्याप्त माया आपस को पै देश ते गुण का नहीं प्रवे जा एक एक भगवंता तय कौन अचिंत सलागे चिंता जय अपने आप आप त्यारा तय कौन कथे गुण सुनने हारा बो बेन तू ते ऊंचा नानक आपस को आपे पूछा जय प्रचो प्रपंच अकार तय गुण मैं किनो विस्तार पाप पुण्य तय पई कहावत को नरक सुरक मंसावत आल जाल माया जंजाल हुम मोह भरम पै पार दुख सुख मान उपमान प्रकार के उखयान आपन खेलिया आप कर देखे खेल संगोचै तो नानक एक है जब गद भगत है आप जय पसरे पासार संप्रदा दो पा कया पैदने उनकी शोभा उणु बाणी आपे कौते ग्रंथ जो जे आपे रस भोगने जोग जिस भगत से अपना

दृष्टारस्पदि आप कथे आप सुन हारे आपे का विस्तार जाति भाव तस्तु पाए प्रभाणी लय समाये तुम ते भिन्न कुछ हो आपन सु सजग पुराए जा को ब्रा जु आप जाए सतनाम सुजन पाए सो समदर्शी तत् कवेता नानक सगले श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सब ताके आ दीन दयाल नाथ को ना जिस राखे सो कोई न मारे सो मुसमन तिसमन उसारे तिसे जबर कहाँ को जाए सब श्री निरंजन राय जी की जुग जाके सब हाथ अंतर बार जन सात गुणी धन बिंत पार नानक दास सब लिहार पूर्ण पूरे दया सब उपरोत कृपाले अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रवे आप प्रतिपाले जीवन बो भात जो जोर चुस्त सत्या जिस भावत ले मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मनंत्र विश्वास कर माने करण हर नानक जाने जन लागा हरे के ना जिसकी आसन वृत्ति जाए सेवा को सेवा बने कुंभुज परम पोत पाए स्त्री प्रणय विचार जाके मन में सहनकार बंधन दूर भय निर्वैर अंदन पूजे गुर के पैर लोक सुखी परलोक सोए ले नानक हर परमापे मिले सत्संग मिल गुरानंद गुण गाव पर परमानंद राम नाम तत्करो विचार दृढ़ देखा करो उधार अमृत वचन हर के गुण गाव प्रांतरण कह स्वभाव आठ पैर पर वेखो नेरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदे सिर देवसाओ मन से नानक पल पाओ हलत पल दुले सुहा राम नाम त्रुतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसती साज प्रख्या मन तन नाम जपोले बुलाए दुख तरत मन दे बोझाए सच वपार करो वपारी दरगन भे खिप तुम्हारी काटी रखो मन माए नानक बहु न आवे जाए तिस्ते दूर कहाँ को जाए राखन हारते आए निर्भव जपे सकल भव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छूटे जिस पर वाक तिस नाही दुख नाम जप मन अशोक चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताकी कार्ज पूरा मत पूरे अमर जाके दृष्ट दर्शन पिख दुर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप धन सेवा चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदरा रूप धन सेवा से उपर अंतर जामी प्रभु गुरदान जिस मन मसूद निहाल ताके निरुक्त निपनाद खाल अमर भये अमरा पद पाए आ साध संग नानक हर ध्याए आ सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत फेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपदी संत संगंत्र प्रवडीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सकल समग्री एक कटमायन करंग नाना दिष्टाय नौन दमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाधन तैनात कह न चाचर विस्मात इंद कैसे आप दिखाए नानक तिजन सो जी पाए सुंतर सु बाहर अनंत कटकट ब्या भरिया भगवान तरण मय आकाश प्या सब लोक पूर्ण प्रताप आल बंतन पर्वत है परम जैसी आज्ञा तैसा करम पौन पानी बैसम तरम आए चार कुण दैस समाए तिस्ते भिन्न नहीं कोठा गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण स्मृत मैं देख सस्थिर सुन कत्र मैं एक बाणी प्रभु की सब को बोले आप डोल न कबू डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाई गुणे मोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत आर्यो स्वामी उत्पोध गुरु प्रसाद भ्रम का नाश नानक तिन में विश्वास संत जना का पीखण सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत सना सुन सुबचन सर्वव्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसके रहते सत भजन सब सब कहते जो जो सो इस कुमाने करण करावन हर पर जाने अंतर वसे बार पियो नानक दर्शन दे सम होई आप सत गया सब साते तिस प्राप्त सगले उत्पाद तिस भाविता कर विस्तार तिस भाविता एक अंकार कला लिखने जाए जिस भावत ले मिलाए कम नुकड़कुन कही दूर आपे आप भरपूर अंतर गज से आप जनाए नानक तिस जाने आप हो जाए सर्वभूत अवरतारा सर्वनयन आपेखंडारा सकल समग्री जाखा तन आपन जस आप सुनाम जाने खेल बनाया गया घारी की निभाए सबके मध्य अलिपतोरा जो कुछ कहना सुपे कहे आगे आवे आगे जाए नानक जा भावे ते समाए स्ते हो सुनाई पूरा और कहो किने कछ कर आप भला कर तुदा ने कि आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साच ओत पोत आपन संग्राज ता कि कदम कही ना जाए दूसरो तसो जी पाए तिसका की आसा प्रवान गुर प्रसाद नानक जान जो जाने तिसका सुख होया मिलाए ले प्रभ सोए ओह धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जनया जिस पर सत सब जगत राय।

गुणों गाव अष्टपद पूरे गुरु का सुन उपदेश पार भ्रम निकट कर पे सा सा सिमरो गोविंद मंत्र गुत्रे चंद आसने त्याग गोत्रांग संजना की धुर मन मांगे आप छुड़ बेनती करो सा संग अग्न सागर तरो हर तन की परड़े भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहजनंद सा संग पाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद मृतरस पियो चित्त नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कहे धार तुम सलोक साध के वचन अमुलीक लाल रत्न सुनत कमाओ त्यो उदार आप त्रै लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा रंग जय जय सवत नाथ वाजे सुन सुनंद करे प्रभु गज परे गोपाल मात के माते नानक उदरे तिनके साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रवाह मिलाए मिट गई बैर भय सब रेण अमृत नाम सा संग लैण पसो प्रसन्न पै गुरदेव पूर्ण हो सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक देवी खेफ कुमारी प्रभु की सुखरो सुनमी सावधाने का गर्चित सुखमणि सहज गोविंद गुणनाम जिस मन बसे सोत निधान सर्विचा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख पुरख सब लोए सब तुझ स्थान बहु न होए आउन जान हरतन खड़त लिजन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नाम निद बुद्ध ज्ञान सर्वता सिद्ध विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान से सुतम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सब के मत सकल ते उदास सुंदर चतुर तत् गेता समदर्शी एक दिष्टेता ए फल तिस जन के मुख भाणे गुरु नानक नाम वचन मन सुने इन धन जपे मन कोय सब जुग मैता की गत होय गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरो शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कूड़ भरा सा संग मिटे संत कृपा ते जमते छुटे जाके मस्त क्रम प्रभु पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै

अमृत नाम निर्मूल कहीरा गुर दीनो मन तानी दिगे ना डोले दिरड़ कर रहो पूर्ण होए तरपतानी ओए जो बीच हम तुम कछ होते जैन

गुण गाव अष्टपदी पूरे गुर का सुनोपदी पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरु गोबिंद मन अंतर की उतर चिंद आस नित्याग उतरंग संजना की तूर मन मांग आप छोट बेनती करहो सा संग अग्न सागर तरहो हर तन के पर लिहो भंडार उनान गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साह संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का आधार उत्तम सलोक साध के बचन मुलीक लाले रतन सुनत कुमार तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का सांग जाकर मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाह दवाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महात कह माथे नान कुदरी तिनकै साथे शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभाव मिलाए मिट गए बैर भय सबरे नमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हो सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद आया प्रभु धारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मी सावधान एकागर चीत सुखमणि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण हुए प्रधान पुरख प्रगट सब लोई सब त्यो च पाए स्थान बहुर न हो बया मन जान हर तन खाट चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या ताप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कमल सगल ते उदास सुंदर चतर तात का बेता समदर्शिक दृष्टिता ए पालत सिजन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने

गज को त्रास मिट्यो जै सिमरत, जिन्हों मिटन दे नाल हाथी छुट गया ते तू ता बंदा तुम काहे विसरावो, ते तू क्यों नहीं रब जी नूं चेते करदा फिर। ताज अभिमान, बस इहनूं गाउण दे लई आह काम करना पैंदा, ताज अभिमान मोह माया फुन भजन राम चित लावो। महाराज कहिंदे पहला तो ईगो छड़नी पैनी आ, माया का मोह छड़ना पैना आ, फिर वाहिगुरु जी प्यारे लगन लग पैने। हुण हले काम प्यारा लगता आ, हले अपनिया वो गलत चीज़ां प्यारियां लगदियां आ। असी वो मैं आनंद करते कहना ना बच्चा बच्ची नूं ना पुत्र आपां शराब नहीं पिलाउणी, ये नाल महाराज जी का खुशी नहीं मिलनी, तो आपां महाराज की खुशी लैण तां आ। तो उन्हां दा जवाब यह हुंदा ज्ञानी जी असी वी आर एग्री, मम्मी डैडी नहीं मानदे। तो मैं हैरान होना आ कि बच्चे मन रहे या मम्मी डैडी नहीं मन रहे। एक मान अभिमान है, कादा मान अभिमान है, माया दा, कि लोकी की कहणगे, जिन्हां दी असी पीती है उन्हां नूं पढ़ाई नहीं वह की कहणगे, आ उन्हां दी वर्डिंग आ। महाराज कहिंदे मरण मनो विसारिया, इन्हां ने मरण भुला दिता है, तो पाप करे गल गलता ही पाप कमाए। महाराज लिखते हैं कहिंदे इन्ने पाप कमाउंदा है ना गलतान होण वाले। ताज मान मोह माया फुन भजन राम चित लावो। ते नानक जी कहिंदे नानक कहत मुकत पंत एहो, कहिंदे लै मैं मुक्ति दा राह दस चलिया तुहानू, की करियो कहिंदे गुरु दे अनुसारी हो जाओ, गुरु नूं पुछ के जीवना जीना शुरू कर दिओ, गुरमुख होए तुम पावो, तुहानू आप ही राह मिल जूगा। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पातशाह प्रगट जाए, मन्नै मग, मन्नै मग मीन वड्डा राह खालसा पंथ वाला, मन्नै मग ना चलै पंथ, छोटियां छोटियां पगडंडियां नहीं फटदा, फिर शॉर्टकट नहीं लभदा फिरदा, कोई मेरे लिए पाठ कर दे, कोई मेरे लिए अरदास कर दे, मन्नै मग ना चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध, उहदा फिर धर्म दे नाल सिद्धा संबंध बन जांदा। महाराज कहिंदे गुरमुख होए तुम पावो। बाबा जी जिहड़ा मैसेज दे के गए अमृतधारी लाइफ जीव के, वह यही गुरु साहब जी नूं आपां कहीए कि वाहिगुरु जी सानू भी इस जिंदगी दा मोटिव सिखाओ कि लास्ट समय तक आप जी दी सिखी निभ जावे।

गुरु साहब जी कृपा करन। महाराज दया तरस करते अपने घर के जिहड़े मम्मी डैडी दिते ना आपां नूं ये पुरब जन्म के मिले संजोगी आ जिहड़ी जनरेशन इत्थे जम्मी आ दे आर लकी दे लिव विद मॉम एंड डैड जिहड़ी असी आए सी असी अपने माँ पे नूं पिछे छड्ड के आए हाँ पंजाब च छड्ड के आए हाँ ते समटाइम इन्ना केस हो जांदा आ कि आई बीन थ्रू दोज डेज जो लॉकडाउन सी ते मेरे पिता जी चढ़ाई कीते आ ते आई ईवन कांट अटेंड द फ्यूनरल महाराज कहिंदे एस प्रेजेंट मोमेंट नूं जी एस प्रेजेंट मोमेंट नूं जी ते मम्मी डैडी नाल इक इदां दा रिश्ता रख कि वाहिगुरू जीओ आप जी इस रूप दे विच मेरे तो आए हाँ बच्चियां ते मम्मी डैडी दे विच इक इदां दा रिश्ता होवे सेवा सिमरन वाला रिश्ता इंजॉय करनी है लाइफ बच्चों को नितनेम सुन के मम्मी डैडी चंगा लगे मम्मी डैडी को सुन के उन्होंने चंगा लगे एक फैमिली हसदी खेडदी फैमिली ए आ जदों मम्मी डैडी का सुनाया पाठ असी करिए दूर भी होइए तो मम्मी डैडी याद करके असीस दईए उन्होंने सच्चे पातशाह जी थैंक यू वेरी मच तुसी मैनू इदां दी मां दित्ती सी उहदा सिखाया पाठ अज भी मैं करदा अज भी मैं करदी हाँ उन्हां बजुर्गां दी इज्जत करिए जिन्हां बजुर्गां ने साडे लई हर एक ऐशो आराम साडे लई लैके दित्ते आ ना कि उन्हां नूं इह कहीए कि तू साडे लई कीता की है दैट इज़ अनग्रेटफुल दिस इज द मूवमेंट वेयर वी कैन रिफलैक्ट ऑन अवर माइंड अपने बजुर्गां लई धन्नवादी होना कि पातशाह जी बहुत बहुत धन्नवाद इन्ने प्यारे प्यारे आप जी ने सानू बजुर्ग दित्ते जिन्हां ने इन्ना कुछ सानू बना के साडे मोढ़िआं ते रख दित्ता आ गुरु साहब जी आप जी का धन्नवाद नहीं कर सकते तो महाराज कहते बुद्ध धन्नवाद यही आ जे तू पछाण गया कि मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवा हुई पुला चुका दिखी माँ आनंद साहब जी का जाप करते हैं फिर उस तो बाद दे वेच अरदास बेनती करते हैं जिंदगी दे वेच बहुत सारी सिचुएशन गो थ्रू होना पैंदा ड्यूरिंग द काउंसलिंग टाइम विद द यंगस्टर्स I've seen few people they saying, oh, don't cry on that moment. No, no, it's not going to cry. It's not going to cry. Okay, the wrong name or wrong moment is that the Guru Mukh is a very high stage. The emotions are going to come out of the way. So, the Maharaj says, if the Guru Mukh comes out, then the Vaheguru will come out. पर रो दे विच वाहेगुरु कह के रो ताकि उस वाहेगुरु जी दा अंदर घर च वासा हो जावे वह जिहड़े वाहेगुरु दे नाल अंदरले पाप धोते जाण अंदरला हिरदा शुद्ध हो जाए महाराज कहिंदे रोना भी ओ कबूल आ जिहड़े रोने दे विच बिरहा आ जावे वाहेगुरु जी दी तड़फ आ जावे सो ये मूवमेंट आम फैमिली चाहुंदे आ ते इस मूवमेंट दे विच जिन्ना वाहेगुरु जी दे क्लोज जा सको ते दूसरी बेनती मैं ऑलवेज करदा हुंदा जीउंदे जी अपना एक तक सहज पाठ अपना आप कर लो ना महाराज नूं अपना सहज पाठ हार करके अरदास कर दिओ वाहेगुरु जी एक हो गया आप जी ने जिहड़ा जिंदगी दा मोटिव दित्ता सीगा मेरे मरण तो बाद लोकां ने करना सी मैं अपना कर लिया उस तो बाद उहनूं जारी रखना कैरी ऑन इन योर लाइफ लास्ट मूवमेंट तक दैट इज द अचीवेबल सिर्फ चार अंग रोज दे करना आ साल च सहज पाठ हुंदा आ दिस इज अचीवेबल ये जरूर आपां करना इत्थों कुछ सीख के जाइए जे बाबा जी दी याद दे विच बैठे आ पिता जी दी याद च बैठे आ कम से कम कुछ तो प्रोमिस कर लो महाराज ना वाहिगुरु जी मैं रोज आप जी दा सहज पाठ करूंगा महाराज मैं नितनेम नहीं सी करदा मैं जप जी साहब नहीं सी करदा सुखमणी साहब नहीं सी करदा महाराज मैं करूंगा डू समथिंग मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवाई

सुतर तुम ते हो सो तुमरे गत मित तुम्हें नानक दास बोलें सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु तीने ताप नवार नहर दुखंता सुखरास ताको विघ्न को लागे जाके प्रभे आगे अरदास अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती सहाय वार श्री भगवती पातशाह दसम प्रथम भगवती सिमरकाय गुरु नानक लई त्याय फिरंगत गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोविंदन सिमरों श्री हर आय श्री हर कृष्ण त्याई जय रिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरे घर आन दे आवे ताय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई सद दसम पातशाह की जोत धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दार दा ध्यान करके बोलना जी पंजा प्यार चौं साहबजाद चाली मुकत्या हठियां जपियां तपियां।

दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन करम होए प्रभु मेरा। हे बिनंती सुन प्रभु मेरे, दे नाम कर अपने चेरे, अपनी शरण राख प्रभु दाते गुर प्रसाद।

सेजन तृप्त गाई गुण मोल जिस जन बसया ते नर त्रिशन त्रिखाई हर आराध्य रोग अनदाई जिसनों विसरे मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई राव जे जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ शरने जे नर विसरे अपरख विदाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरु मान प्रभ लिव लाई ते महानंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाई ते नरक कोर मैं परया जित को लाया तुथि लागा तैसे ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भये मगन चगनारा जित को लाया तुथि लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी

उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गति तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ के लागे आंसुआए नानक कहु न सिजई बिन नामे पत जाए ऐश्वरी दस वसूले पाछे पावे एक बस कारण भी खोड़ गवावे एक पीना दे दस भी हिले तो मुड़ा को कहा करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजा साध नमस्कारा जाके मन लगा प्रमीठा सर्व सुखताऊ मन बूठा जिस जन अपना हुक्म नाया सर्व थोक नान तिन पाया अगंत छाओ अपनी देर आस खास पीस बरते आनंद उलास अपनी ईमान कछ बहुत साह ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुत उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्ती सागे रखे प्रभ की आज्ञा माने माथे उससे चौगन करे निहाल नानक साहिब सहा दयाल अनक पान माया के हे सर पर वो जान नेत विरक की छाया से और रंग लावे तो बिन से मन पछतावे जो दिस है सो चलन हार लुप्त हो चांदार बटाऊ से जलावे ने ताको हाथ ना वे के मन हर के नाम की प्री सुदाई कर कृपा नान पाप ले लाई मिथ्या तन तन कुटम सवाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज वन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रस अस्ति अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता मिथ्या त्रोह मोह विमान मिथ्या पशु पर कर भगवान अस्थिर पगर साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या शरण पर निंदा सुने मिथ्या पर दर को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पत्र पाद मिथ्या रसना भोजन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तनि पर पुकारा मिथ्या भास ले बिकारा बिन बुझे मिथ्या सब पहे सफल दे नानक हर हर नाम लय वृत्ति सागर की आर्जा साज बिना कहो वो सूचा वृथा नाम बिना तन अंध मुखावत कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन वृथा बिहाये वेग बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन वृथे सब काम ज्यों कृपण के निराल दाम धन धन ते जन जे घट वस्यो हर नाओ नानक तं कह बल बल जाओ रह तवर कछवर कमावत मनी प्रीत मुखो मन लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेश आप न करै अवध जावत जन्म मरै जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना की आपे माने आपे आप आप करत निबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्यान सगल ते रहत सब कुछ जाने आत्म की रहत जिस पावे तिसले लड़ लाए थान थनंतर रिहा समाये सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम करो दर लो मोह बिरस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कल प्रसाद गुरुदेव अष्टपति ये प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मनवाहे ये प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सरल परम गत पावे ये प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर ये प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरत रचना ये प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग ये प्रसाद पाठ चंबर हंडावे तिसे त्याग को तवर लुभावे ये प्रसाद सुख से सुइजा मन आठ पैर तंका दस गिजा ये प्रसाद तु सबको मन है उहता को जस रसन बखान है ये प्रसाद तो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जबर दरगा मान पावे नानक पासे तिगर जावे ये प्रसाद रो कंचन देही लिवलाओ तिस राम स्नेही ये प्रसाद रोला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद रे

ऐसा है, सार के संग से छान उपचार, साधु के संग मैल पहुंचा, सार के संग रे सब धर्म, सार के संग केवल पार ब्रह्म, सार के संग पाए नाम निदान, नान साधु कह कुर्बान, सार के संग सब कुल उदार है, सार संग साजन मीर प्रम निस्तार है, साधु के संग सोतन पावे, जिस तन ते सबको वर्षावे, सार संग धर्म राय करे सेवा, सार के संग शोभा सुरदेवा, साधु के संग पाप लाइन, सार संग गुणगाइन, सार के संग सर्वथान गम, नानक सार के संग सफल जन्म, हार के संग नहीं कछ का हाल, दर्शन पेट हो निहाल, हार के संग कुलुख सर है, सार के संग नरक पर हर है, सार के संग यहाँ वहाँ सहेला, सार संग बिछड़े सर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, सार के संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म सार इर बसै, नानक उदर सार सुन रस है, सार के संग सुनो हर ना हो, सार संग हर के गुण गाओ, हार के संग न मन ते विसर, सार संग सर पर निस्तर है, हार के संग लगे प्रा मीठा, साधु के संग कट कर डीठा, सार संग पै आज्ञाकारी, सार संगत पै हमारी, हार के संग मिटे सब रोग, नानक सार भेटे संजोग, हार की अम्मा बे न जाना, जिता सुन चिता बख्याना, सार की उपमा ते हुंते दूर, सार की उपमा रही भरपूर, सार की शोभा का नाही अंत, सार की शोभा सदा बेअंत, सार की शोभा ऊँचे ऊँची, सार की शोभा ऊँचे ऊँची, सार की शोभा सार बनियाई, नानक सार पर पेर न पाई श्लोक, मन सच्चा मुख सच्चा सोए, अब न पेखा है कस्मिन कोए, नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी का दृश्यमान, जैसे राय रंग को लग गए तुलपान, ब्रह्म ज्ञानी का तीरज एक, ज्यों शुद्धा को खुदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाओ का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश, जैसे तारु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी का नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊँचे ऊँचा।

नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी के रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सगा सज जागत ब्रह्म ज्ञानी है बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख साई निवास।

0: कबू नृत्य करे वो पात, कबू महाक्रोध विकराल, कबू होए बहे वर राजा, कबू अब कीर्त में आवे, ज्यो प्रभ रखे तू ही रह, कबू होए पंडर करे बख्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू कीट हस पतंग होए जिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, जो तिस पावे सोई होए, कबू सास संगत ते पावे, अंतर होए ज्ञान प्रकाश, मन तन नाम रतई करंग, ज्यो जल में जला एक तन, मिट गए दोन पाए विश्राम, सद कुर्बान सलोक सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राजमान,
1: सो नरक पाती होवत स्वान,
0: जो जाने में जो बनवंत,
1: सो बिष्टा सो होवत बिष्टा का जंत,
0: आपस को कर्मंत कहावे,
1: जन्म मरे बहुत जोन परमावे,
0: तन भूम का जो करे गुमान,
1: सो मूर्खंदा ज्ञान,
0: कर कृपा जिसका हृदय लिबि बसावे,
1: नानक इहां मुक्ता का सुख पावे,
0: तनवंता होए कर कर पावे,
1: प्रिंस मान का छंग न जावे,
0: वो लश्कर मानुख ऊपर करे आस,
1: फल पीतरता का होए बिना,
0: सब ते आप जन बलवंत,
1: मैं होए जाए पसमंत,
0: किसे न बदे आप उनकारी,
1: धर्म राय तिस करे खुआरी,
0: गुर प्रसाद जग का मिटे मान,
1: सोजन नानक दरगाह प्रमाण,
0: कोट कर्म करे हम तारे,
1: श्रम पावे सगले बिरतारे,
0: तपस्या करे अंकार,
1: नरक सुरख फिर अवतार,
0: जतन का तर नहीं द्रवे,
1: दरगाह को कैसे गवे,
0: आपस को जो पला कहावे,
1: सब भलाई निकट न आवे,
0: सब की रेन जग का मन होए,
1: ओ नानक ताकी निर्मल सोए,
0: लग जाने मुझते कछ होए,
1: तब इसको सुख नाही कोई,
0: जब ए जाने मैं किस करता,
1: तब लग गर्भ जोन मैं फिरता,
0: जब तारे को बैरी मीत,
1: तब लग नच नाही चीत,
0: जब लग मोह मोहन संग माए,
1: तब लग धर्म राय देश जाए,
0: तब कृपा से बंधन टूटे,
1: गुरु प्रसाद नानक

0: संत कह दुखन आज जा कटाए,
1: संत कह दुखन जमते नहीं
0: छुटाए, संत कह दुखन सुख सब जाए,
1: संत कह दुखन नरक में पाए,
0: संत कह दुखन मत हो मिलीन,
1: संत कह दुखन सो बाते हीन,
0: संत के हते को रखे न कोए,
1: संत कह दुखन थान प्रष्ट होए,
0: संत कृपा कृपा जे करे,
1: नानक संत संग निंदक भी तरह।

0: दला
1: संत का दुखन सबको चला
0: संत के दुखन ते सब जाए
1: संत का दुखन नीच न चाहे
0: संत दुखी गाथाओं को नाहे
1: नानक संत पावे ता ओपी गत पाहे
0: संत का निंदक मात ताई
1: संत का निंदक खिंट करना पाई
0: संत का निंदक मात हरा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक रायते हीन
1: संत का निंदक दुखियार दीन
0: संत का निंदक को सर्व रोग
1: संत के निंदक को सदा बिजोग
0: संत की निंदा दुख में दोह
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख
0: संत का दुखी सदा पवित्र
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित्र
0: संत के दुखी को डान लग गए
1: संत के दुखी को सब त्याग
0: संत का दुखी अहंकारी
1: संत का दुखी सदा भिखारी
0: संत का दुखी जन्म मरे
1: संत की दुख ना सुखते टरा
0: संत के दुखी को नहीं ठाव
1: नानक संत पावे ता ले मिलाए
0: संत का दुखी अर बीते टूटे
1: संत का दुखी किते काज न पहुँचा
0: संत के दुखी को ध्यान फरमाइए
1: संत का दुखी उजड़ पाइए
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
1: जो सांस बिना मृतक किलो था
0: संत के दुखी की जड़ किसना है
1: अपन बीज आपे ही खाहे
0: संत के दुखी को वरन रखन हार
1: नानक संत पावे ता ले उबार
0: संत का दुखी ओं बिलाए
1: जो जल भून मछली तड़फड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
1: जो पावक इंदन नहीं त्रापा
0: संत का दुखी छुटाई के ला
1: जो बुआड़ तिल खेत माए तो हिला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सत में त्या कहत
0: किस निंद का तुरी प्या
1: नानक जो तिस पावे सोई त्या
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए
1: संत के दुखी को दरगाह मिला सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाइए
1: संत का दुखी न मरे न जिवाइए
0: संत के दुखी की पूजन आशा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत के दुख न त्रिष्ट को है
1: जैसा पावे तैसा कोई होए
0: कया कृष्ण मिटे कोए
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब घट तिसके हो करना है हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: सब की उस्तत करो दिन रात
1: सहत्या हो सास करा
0: सब कुछ वर्ते तिसका किया
1: जैसा करे तैसा को दिया
0: अपना खेल आप करना है हार
1: उसर कौन कहे बिचार
0: विष्णु कृपा करे जिस आप नाम दे।

0: राष्ट्रपति मानो की टेक वृत्ति सब जान
1: देवन को एक भगवान
0: जिस कर दिए रहे गाये
1: और न तृष्णा लग गया
0: मारा रखा एक को आप
1: मानो के किछ नाही हाथ
0: जिसका हुक्म होई सुख होए
1: जिसका नाम रख कंठ परोए
0: सिमर सिमर सिमर परसोए
1: नानक बिघ्न न लग कोई
0: उस कर मन में कर निरंकार
1: कर मन मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रस नामृत पियो
1: सदा सुहेला कर लह जियो
0: नैनो पे ठाकुर का रंग
1: सासंग बिन सह सब संग
0: करम चलो मार गोविंद
1: मिटाए पाप जपिए हर बिंद
0: हर हर करम शरण हर कथा
1: हर दरगाह नानक उज्जवल मथा
0: बड़ भागी से जन जग माहे
1: सदा सदा हर की गुण गाहे
0: राम नाम जो करे विचार
1: से तनवंत गनी संसार
0: मन तन मुख बोले हर मुखी
1: सदा सदा जन होते सुखी
0: एको एक एक पछन
1: दुत कियो सो जी जान
0: नाम संग जिसका मन मान्या
1: नानक तिने निरंजन जान्या
0: गुरु प्रसाद अपना आप सुजै
1: इसकी जन हो तृष्णा बुझे
0: सात संग हर हर जस कहत
1: सर्व रोग ते ओ हर जन रहत
0: अंतिम कीर्तन केवल बखियान
1: ग्रस्त मैं सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आशा
1: इसकी कटिया जम की
0: फासा की जिस मन भूख
1: नानक तिसे न लागे दुख
0: जिसको हर पर मन चुते आवे
1: सो संसहेला नहीं डुलावे
0: जिस पर अपना कृपा करे
1: सो सेवक को किसते डरे
0: जैसा साथ ऐसा दृष्ट आया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: सोदर सोदर सोदर सीजिया
1: गुरु प्रसाद तत् सब बुझे
0: जब देखो तब सब किस मूल
1: नानक सो सुखम सोई स्थूल
0: न किस जन्म न किस मर
1: अपन चलता भी करे
0: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
0: अपे आप सगल में आप
1: अनक जुगत रचता पुताप
0: अब नासी नाही किस खंड।

0: की सेवा सोई लागे,
1: विष्णु कृपा करहै बड़ भागै,
0: नाम जपै पावै विश्राम,
1: नानक तिन पुरख को उत्तम करमान,
0: जो कछ करै सो प्रभ कै रंग,
1: सदा सदा बसै हर संग,
0: सहज सुभाए होवे सो होए,
1: करनै हार पछाणै सोए,
0: प्रभ का किया जन मीच लगाना,
1: जैसा सा तैसा दृष्टाना,
0: जिससे उपजे जिस माहे समाए,
1: होए सुख निदान उन्हों।

0: ज्ञान नाव चरत रहे,
1: प्राणी गुर चरण लगत निस्तर,
0: ज्ञान अंधकार दीपक प्रगास,
1: गुर दर्शन देख मन होए विगास,
0: जो महाउद्यान में मार्ग पावे,
1: जो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे,
0: तिन संतन की बांछो तूर,
1: नानक की हर लोचा पूर,
0: मन मूर्ख काहे बिल आइये,
1: पूर्व लेखे का लिखिया पाइये,
0: दुख सुख प्रभ देवन हार,
1: अवर त्याग तुम सचता,
0: जो कुछ करे सोई सुख मान,
1: भूला काहे फिरे जान,
0: कौन बस आई तरह संग,
1: लपट रहे हो रसलो भी पतंग,
0: राम नाम जब हृदय माहे,
1: नानक पत सेती कर जाहे।

0: सच कर नी सचा की रहत
1: सच हृदय सतमुख कहत
0: सच दृढ़ सचा कार
1: सच वर्ते सचा पसार
0: आर रंग जी सच कर जाता नानक सो जन सच

0: सदी
1: अविनाशी ब्रह्म में राख
0: मन की तुम प्री त्याग
1: तुझसे परे नहीं किछ होए
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: अपे बिना है अपे जाना
0: गहर गंभीर गहीर सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा निधान दयाल बख्शंद
1: साथ तेरे की चरनी पाओ
0: नानक मन ए अनराव
1: मनसा पूरन सरना जोग
0: जो कर पाया सोई होग
1: अन्न परन जाका नेतर फोर
0: जिसका मंत्रण जान होर
1: अनद रूप मंगल सजा कर
0: सर्व तोक सुनियो करता कर
1: राज में राज जोग में जोगी
0: तप में तपिश ग्रस्त में भोगी
1: त्याहे त्याहे भगत सुख पाया
0: नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया
1: जाकी लीला की मचना है
0: सगल देव हारे अब गाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोई।

0: करे खिनवाए
1: पूरे हो पूर्ण सब ठाए
0: अपनी बनत आप बनाई
1: नाना वेद कर बनत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाओ
0: जप जप जीवे नानक कर नाम
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
1: नाम के तारे सिमरत भेद प्राण
0: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पताल
0: नाम के तारे सगल आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब पवन
0: नाम के संग द्रे संसरण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: सच केवल प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी माणी
0: सत पुरुष समाहे समाणी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत्त
1: सत करनी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुरु ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत रंजा कर रह प्रवेश
1: सत नृत्य बुझे जे कोई
0: नाम जपत ता की अर्थ होए
1: आप सत किया सब सत
0: आपे जाने अपनी मित गत
1: जिसकी शिष्य करने हार
0: अवर न बूझ कर्त विचार
1: करते कीमत न जाने किया
0: नानक जो तिस भावे सो वर्तिया
1: विस्मन विस्म पे विस्माद
0: जिन बुझिया तिस आया स्वाद
1: प्रभु के रंग राजन रहे
0: गुर के वचन पदार्थ लहे
1: होए जाते दुख कटन हार
0: जब के संग तरह संसार
1: जब का सेवक सो बट भागी
0: जन के संगे

0: वैष्णवी चरण सत सत परसन हार
1: पूजा सत सत सेवदार
0: दर्शन सत सत देखन हार
1: नाम सत सत ध्यावन हार
0: आप सत सत सब धारी
1: आपे गुणकारी
0: शवर सत सत प्रभक्ता
1: सुरत सत सत जस सुनता
0: दूजन हार को सत सब होए
1: नानक सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप हृदय जन मान्या
1: कर्ण करावन दिन मूल पछान्या
0: जाके जय विश्वास प्रवाया।

0: अपने जन का पर्दा ढक
1: अपने सेवक की सर पर रख
0: अपने दास को दे बढ़ाई
1: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आपत रख
1: ताकि गदमित कोई न लख
0: के सेवक को न पहुँचे
1: के सेवक पूछते ऊंचे
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दह दृश्य प्रगटाया
0: की में कर रख
1: पसम करे लश्कर कोट लख
0: जिसका सास न कर देता
1: ताको रख देकर हाथ
0: मानस जतन करत वो भांत
1: इसके कर्तव्य बिरतह जात
0: मारे न रखे और न कोए
1: सर्व जिया का रखा सोए
0: काहे सोच करे रे प्राणी
1: जब नानक प्रभु अलख बनानी
0: बारंबार बार प्रभु जपिए
1: ई अमृत मंत्र तंत्रपिए
0: नाम रतंजन गुरु मुख पाया
1: इसके अवर नाही दृष्टाया
0: नाम धन नाम रूप रंग
1: नामो सुख हर नाम का संग
0: नाम रस जो जन तृप्तान
1: मंत्र नामे नाम समान
0: उठल बैठल सोवत नाम
1: दो नानक जन का सत्काम
0: बोलो जस सेवा दिन रात
1: प्रभु अपने जन की नींदा
0: करे भगत आत्म का चाहे
1: प्रभु अपने स्व रहे समाये
0: जो हुआ हो सो जन
1: प्रभु अपने का हुक्म पहचाने
0: जिसकी महिमा कौन बखानो
1: जिसका गुण का एक न जानो
0: आठ पैर प्रभु से जुड़े
1: दो नानक से ही जन पूरे
0: मन मेरे तिन की ओट ले
1: मंदन अपना तिन जन दे
0: जिन जन अपना प्रभु छाता
1: सो जन सर्व थोक का दाता
0: जिसकी शरण सर्व सुख पावे
1: जिसके दर सब पाप मिटावे
0: और श्याम सगले

0: प्रभु की नित नीत।
1: एको
0: नानक मांगे नाम प्रभु सार, हरस पावे बिरला कोए, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: परे प्रेम रस रंग,
0: उपजय चाव साध के संग,
1: परे शरणान सब त्याग,
0: अंतर प्रकाश अंदर निवलाग,
1: बड़े भागी जपया प्रभु सोए,
0: नानक नाम रते सुख होए,
1: सेवक की मन सा पूरी पई,
0: सतगुरु ते निर्मल मत लई,
1: जन को प्रभु होयो दयाल,
0: सेवक कीनो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुझे जन पया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: इस पुनी श्रद्धा सा पूरी,
0: रव रहया सद संग हजूरी,
1: जिसका साथ इंद्रिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाए,
1: सो क्यों बिसरा जे काल न पाने,
0: सो क्यों बिसरा जे किया जाना,
1: सो क्यों बिसरा जे सब किस दिया,
0: सो क्यों बिसरा जे जीवन जिया,
1: सो क्यों बिसरा जे अगर मैं रख है,
0: गुरु प्रसाद को बिरला लख है,
1: सो क्यों बिसरा जे बिखते काटे,
0: जन्म जन्म का टूटा गांडा,
1: गुरु पूरा तते है बुझाया,
0: प्रभु अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो एकां,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अपरा नाम जपावो,
1: भगत पाए तरिया संसार,
0: भक्ति तन होसी छा,
1: सर्व कल्याण सुख निदना,
0: बूढ़त जात पाए विश्राम,
1: सवल दूप पाओ वचनास,
0: नानक नाम जपो गुणतास,
1: उजी प्रीत प्रेम रस चाओ,
0: मन तन अंतर ही स्वाओ,
1: नेत्र पे दर सुख होए,
0: मन भिक्षे साध चरण धोए,
1: भगत नाम के मर्दन रंग,
0: बिरला को पावे संग,
1: एक बस दीजे कर मेया,
0: गुर प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकी उपमा कही न जाए,
0: नानक रहा सर्व समाए,
1: बख्शंत दीन दयाल,
0: भक्त वचल सदा कृपाल,
1: आज पुरख कारण करताल,
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल,
1: आज पुरख कारण करताल,
0: भक्त जना के प्राण धार,
1: जो जो जपै सोहे पुनीत,
0: भक्त पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीचे जान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व गुण मोह मोह पाए,
0: एक नमक हर के गुण गाए,
1: अनेक राय भोग वढाई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सुकरनी शोभा।

0: पशुपति जब कार्य कसना दृष्टिता
1: अपन कब कहते होता
0: जब धारी अपन सुन समाद
1: बैर विरोध की संकमा
0: जब इसका वरण चिन्ह न जापत
1: तब हर शोक को किस व्याप्त
0: जब अपन आप पार ब्रह्म
1: तब मोह कहा के सोबत परम
0: अपन खेल आवर्ती जा
1: न करने हार न दूजा
0: जब होवत प्राप केवल तनी
1: तब बंद मुक्त को किसको गणी
0: जब एक के हर गम अपार
1: तब नरक नरक स्वर्ग को कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्राप सह सवाए
1: तब शिव शक्त कहो कित ठाए
0: जब आपे आप अपनी जो तर
1: तब कवन निडर कवन कत डरा
0: अपन चल साफ करने हार
1: नानक ठाकुर अगम पार
0: अविनाशी सुख अपन आसन
1: जन्म मरण को कहा बना
0: जब पूरन करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास कहो किस होए
0: जब विगत गोचर प्रवेका
1: तब चित्रगुप्त किस पूछत लिखा
0: जब

0: अंतर्जामी पुरुष प्रधान
1: मन बसर होत निहाल
0: ताकर निकट न आवत काल
1: पाए मरा पर पाया
0: सा संग नानक करते आया
1: सलोक ज्ञान अंधेर गुर दिया
0: ज्ञान अंधेर विनाश
1: हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टवरी संत संग अंतर प्रवडीठा
0: नाम प्रभु का लागा मीठा
1: सरस मिगरी एक घट माहे
0: अनेक रंग नाना दृष्टा
1: है नौनी दमरत प्रभु का नाम
0: देही में इसका विश्राम।

0: अष्टपदी
1: पूरे गुरु का पुण्य उपदेश
0: पार ब्रह्म निकट कर पेख
1: साथ साथ सिमरो गोविंद
0: मन अंतर की उतरा चिन्ह
1: आस नित्य त्यागो तरंग
0: संत जना की तूर मन मंग
1: आप छोड़ बेंती करो
0: साथ संग अग्न सागर तरो
1: हर तन के पर लियो पंडा
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग भज परमानंद
1: नरक निवार धारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितवन नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग नेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूरन कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: श्लोक सार केवल

0: पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने
1: जबत करत करा करतारा पर जा तर तर देह अपारा
0: जब या करख करत हो कब हूँ तो मैं मिलत देह तर सब हूँ
1: निते वरन से सब तारे आप अपनी बूझ उचारे।

0: दुख पंजनी साहिब गौड़ी महला पंजमा मांझ दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम
1: दिया पूरन सतगुर ज्ञान रहा
0: जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा।

0: चरण मिटी खुद तास रहाउ।
1: सर्व कल्याण सुख सह निदान जाकर दावसै भगवान।
0: औखद मंत्र तंत सब शार करणे हार हृदय में तार।
1: तज सब परम भजो पार ब्रह्म कहो नानक टाले हो धर्म।
0: गौड़ी महला पंजमा शांत भई।

0: करी काटिया दुख रोग
1: मन तन शीतल सुखी पे आप प्राप्त अमन जो राहो
0: औखद हर का नाम है जित रोग न व्यापे
1: सात संग मन तन हित है फिर दुख न जापे
0: हर हर हर हर जापी है अंतर ले बलाई
1: किल विख उतरे शुद्ध होए साधु शरण आई
0: सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई
1: महा मंत्र नानक कथा हर के गुण गाई
0: बिलावल महला पंजमा हर हर हर आराध्य होई है आरोग
1: रामचंद की लश्का जिन मारिया रोग रहो
0: गुर पूरा हर जापी है नित की चै भोग
1: सनत कै वार न मिलिया संजोग
0: जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग
1: नानक प्रभु शरणागति करण कारण जोग
0: राग बिलावल महला पंजमा दोप दे कर पंजमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: और पाप सब त्याग्या दारू नाम लिया
0: ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन भया
1: गुर पूरा आराध्या सगला दुख गया
0: राखण हारे राखिया अपनी करमया रहाओ
1: प्रभु काढ़िया किन्ना अपने
0: सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया
1: बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया प्रभु उपजा सुख शांत
0: वड प्रताप अचार्य रूप हर की नी दात
1: गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई
0: हम तिस की शरणा।

0: दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझी मन तन सच त्राप
1: नाश को नाश सरल समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप
0: भगत बच्छल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक आलाप
1: सोरठ महला पंजवा कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय रोगा
0: कोट बिगन लाथे प्रभ शरणा प्रगटे भले संजोगा
1: बाणी शब्द सुभाख्या गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरे तू रख्या रहो
0: साचा साहेब अमित बढ़ाई भगत बच्छल दयाला
1: संता की पैर रखदाया
0: हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्ब वेला मुख पावो
1: जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो
0: सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्ब कला बने आई
1: प्रगट भई सगले जुगे अंतर गुरु नानक की वडियाई
0: सोरठ महला पंजमा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहार।

0: पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी अपना बिरद समारिया।
1: कोई राजे राम की रखवाली सुख सहज नंद गुण गावो मन तन दे सुखाली रहाओ।
0: पतित उदाहरण सतगुर मेरा मोहि तिसका परवासा।
1: पुछ लए सब सच्चे साहिब नानक की अरदास।
0: सोरठ महला पंजवा बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग बिदारे।
1: गुरपुरे की शरणी उबरे कार सगल सवारे।
0: हर जन सिमरिया नाम आधार ताप उतारिया सत गुर पूरे अपनी कृपा धार रहाओ।
1: सदा आनंद करे मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राख्या।
0: वड्डी वड्याई नानक करते की साच शब्द सत भाख्या।
1: सोरठ महला पंजवा पै कृपाल स्वामी मेरे ते साचे दरबार।
0: सत गुर ताप गवाया भाई ठंड पई संसार।
1: अपने जी जन तापे राखे जमे की ओर तार।
0: हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरिये भाई दुख किलविख काटन हार रहाओ।
1: जिसकी शरणी उबरे भाई जिन रचिया सब कोए।
0: करण कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए।
1: नानक प्रभु त्याई भाई मन तन शीतल हो।

0: से मुक्त से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी
1: निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी
0: जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी
1: से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी
0: तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता
1: तेरे भगत सलाहन तुझ जी हर अनक अनेक अनंता
0: तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तप जपै बेअंता
1: तेरे अनेक पढ़े वो सिमरन शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता
0: से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता
1: हर पुरख परम परकर्ता जी तुझे वडे वरन कोई
0: तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई
1: तुझे आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई
0: तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई
1: जन नानक गुण गावे करते गे जी जो सर से का जान होई
0: आसा महला चौथा तू करता सच्यार मेंडा साई जो तो पावे सोई थी सी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ
1: सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करें तू नाम रतन पाया
0: गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया
1: दरियाओ सब तुझी माहे तुझ बिन दूजा कोई ना है
0: जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मेल बिछड़िया संजोगी मेल
1: जिसनो तू जनाए सोई जन जान।

0: पाशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सब तुम कावो आप हाथ दे मोहे बचावो
1: बसे मोरो परिवार
0: मोर अच्छा निज कर।

आप हाथ दे मुझे उबरे है, मरण काल का त्रास निवरे है। राख लियो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छने उपजायो। नमस्कार ते सही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। संतन

राग रतन परवार परिया शब्द गावणे आईया। कह नानक नंद होआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख साबे सारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यो मनो बिसारे। साचे साहिबां क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब किच है जिस दे सो पावे सदा। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु बेट हो जिस दिया ए वडे आईया। वाजे पंच शब्द तित कर सभागै कर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। तुर करम पाया।

0: वार्ष ऋतु अतिन की पातशाही दसवीं और एक प्रथम भगवती समर का है गुरु नानक लई त्याए रंग गुप्त अमरदास रामदास हमें सहाय अर्जन हर गोविंद सिमरों श्री हर आए श्री हर कृष्ण त्याई जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नान दयावताए सब थाई उन्होंने जी सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सब थाई उन्होंने जी सहाय दसां पातशाहियां दी जावदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दिया का ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहे गुरु
0: पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चाली मुक्तियां शहीदां मरीदां हटियां तपियां जपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छपिया देख चलाई तेग वाही देख के अंदेश किता जिन्हां गुरमुख प्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के

जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दया गया पहिय काल की चले चलायो पंथ, सब सिख संतो हुकम है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट ग्रंथ की दे, जो प्रभु को मिले।

कामिल हो प्यारे जिया। गोयल आया गोयली क्या तिस डंफ पसा, मोहलत पुन्नी चलना।

अखर जिन को आया। जप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेश्वर नाम।